आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। बात कर रही हूँ ढेर सारे बहानों के बारे में, एक्सक्यूजेस के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई सबसे क्रिएटिव बहाना या फिर सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा और ईजी या फिर काम करने वाला बहाना आपको क्या लगता है। और बहुत सारे कॉल्स आए। अरुण जी ने शेयर किया कि वो जब छोटे थे तो वो और उनके सिस्टर सेम स्कूल में पढ़ते थे। वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे और उनकी सिस्टर उनसे छोटी थी, आई थिंक वो सेकेंड स्टैंडर्ड में थी। और कभी कभी जब, और उनकी जो छोटी बहन थी ना वो बहुत ज़्यादा शरारती थी, शी वॉज फेमस, ठीक है कि ये तो बहुत शरारती है, नॉटी है, बदमाशी करती रहती है। और अरुण ने अपना स्टैचर जो है, अपनी पोजिशन खुद को ऐसे की थी कि वो तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, और लेकिन जब कभी कभी वो नहीं करते थे अपना होमवर्क तो वो जानबूझ के अपनी कॉपी से, अपनी वर्कबुक से जो है पेजेस फाड़ देते थे कि, और दिखाते थे सामने टीचर वाले को, मैम सर देखो हम, मैंने तो किया था लेकिन वो मेरी छोटी सिस्टर है ना वो थोड़ी शरारती है तो उसने ना वैसा फाड़ दिया, अब क्या करे। कुछ बेचारे टीचर्स भी, हाँ हाँ वो तो है थोड़ी नॉटी सी, आपने किया होगा, आपने, आप पक्का आप अच्छे स्टूडेंट हो। बेचारी उनकी सिस्टर खामखा इनके जो है बदमाशियों का भी बोझ अपने सर पे लिया हुआ था उन्होंने। और उनकी मम्मी भी उसी स्कूल में टीचर थी, फिर भी वो ये सब इतना मज़े से कर पा रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड कुडोस टू यू अरुण जी। और फिर हमें फ़ोन आया मोहम्मद जी का, उन्होंने बोला कि देखो एक बहुत ना ईजी सा या फिर काम करने वाला एक एक्सक्यूज़ ये है कि पेट में दर्द है। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि बुखार है, फीवर है, तब तो थर्मामीटर से चेक हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि नहीं आप तो बहाना मार रहे हैं। लेकिन अगर आप पेट दर्द बोल रहे हैं तो सामने वाले या फिर आपके पेरेंट्स, अगर आप छोटे हैं, स्कूल नहीं जाना है, अब बोला कि पेट दर्द है तो पेरेंट्स भी, अच्छा कोई नहीं आराम कर लो, या फिर ऑफिस में बोल दिया कि पेट दर्द है तो भी बोल देंगे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सुरैया जी ने भी ऐसा ही कुछ बताया कि तबीयत खराब है, ऐसा बोल देना ना थोड़ा इजी सा एक्सक्यूज़ है। कभी ऑफिस से जल्दी जाना हो तो ये बोल देंगे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आपको कोई माइंड नहीं करेगा, आपको ना ऐसे सिक लीव वगैरह मिल जाएगी। तो आई डेफिनेटली थिंक कि हाँ दिस वर्क्स। लेकिन अगर सच में आपकी तबीयत खराब हो तो आपको कहाँ जाना है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, या फिर पैशन हेल्थ अगर आपके नेटवर्क से बाहर है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये लेके आए हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है पैशन हेल्थ डायरेक्ट, ओनली $485 अ मंथ, जहां पे आपको सब मिलेगा, प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ। तो आप कॉल या टेक्स्ट करके जो है इन सर्विसेज के बारे में जान लें कि इस प्रोग्राम में क्या है, कैसे अप्लाई करना है। और नंबर है 214-666-6259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज passionhealthphysicians.com। वैसे बता दूं कि ये प्रोग्राम ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और ये ना फ्रिस्को लोकेशन पे भी आ गए हैं और सैटरडे संडे को भी ओपन रहते हैं, तो आप आज या कल भी जा सकते हैं वहां पे।

जी हाँ, कुछ बहाने भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल हटके झटके, जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते। और उन्हीं में से एक शेयर किया है हमारे लिसनर ओम ने। वो मैनेजर थे और उनके दो सबॉर्डिनेट्स थे आई वुड से, और एक का नाम था विपिन, जो कि दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और ये जब भी ये जो है पूछते थे प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो है उनका बोलता था जो पहला वाला सबॉर्डिनेट था, मुझे नाम नहीं पता सॉरी, उन्होंने ये बोला कि यार वो ना सर वो विपिन नहीं है। दो तीन बार ऐसा हुआ, फिर इनको रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है। आप वो बोलते थे कि ठीक है तुम आईटी से बात कर लो, देख लो वो प्रॉब्लम सॉर्ट कर लो, अगर वीपीएन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उन्होंने फाइनली विपिन को ही कॉल करके पूछा कि अच्छा क्या इशू है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई वो जो पहला बंदा है वो विपिन और वीपीएन में कन्फ्यूज कर रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि वो बंदा विपिन अभी अवेलेबल नहीं है और VPN बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, एंड इट इज फनी। वैसे टू ऑल द विपिन्स वर्किंग इन आईटी, यार ये तो अच्छा बहाना है आपके लिए कि आपके आसपास के ना फ्रेंड्स हमेशा ये बोलते कि वो विपिन नहीं है, VPN कनेक्ट। आपको ये नहीं बोलना है कि कनेक्ट नहीं, और ऐसा यूज करना ही नहीं है वर्ड्स, बहुत केयरफुली चूज करना है कि VPN नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे बहाने में सुनने को मिले, लेकिन ऑफिस में जो वर्क लाइफ बैलेंस करने वाले जो बहाने होते हैं, सपोज कि अगर ऑफिस में डेडलाइन है, घर में रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना है, और कुछ नहीं हो पाता, तो ना कहीं खुद को ब्लेम कर ले देते हैं कि यार मैं ही लेजी हूँ, सामने वाला कुछ पूछा चाहिए क्यों नहीं हुआ। तो फिर आप खुद को या फिर सामने वाले को ये बहाना देने लगते हैं कि आप जो है लेजी हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ना ऐसे लेजीनेस नहीं होती, हम अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स कर दिए होते हैं और हर चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं, जिसको ऑनेस्टली या प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कभी कभी ना बोल दीजिए, ताकि आपको बहानों की ज़रूरत ही ना पड़े।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
2: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

आप सुन रहे हैं फनेश्वर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज हमने बहुत सारी बातें की बहानों के बारे में और कुछ लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि कभी कभी ना वो बहाने जब नहीं बना पाते तो वो चैट जीपीटी यानी एआई की मदद लेते हैं कि सजेस्ट कर लो यार कि ये सिचुएशन है और अभी हमको करने का मन नहीं है, तो हम कैसे बहाना बनाएंगे सामने वाले को बुरा भी ना लगे। वैसे एआई को यूज करने यानी उसको यूटिलाइज करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं। स्पेशली अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको मैं मिलवाती हूँ स्मार्ट रीच एआई से, जो कि है फनेश्वर नेटवर्क प्रोडक्ट, जो कि हेल्प करेगा आपको अपने पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स को ढूंढने में, उनसे इंटरेक्ट करने में, और वो भी जो आपके कॉम्पिटिटर्स से मिल रहे हैं यानी कि सारे के सारे एक्चुअल कस्टमर्स। ऐसा नहीं है ना, कभी कभी हम जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पेजेस एक्टिव हो लग रहे हैं कि अच्छा बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, रीच भी अच्छी है, लेकिन क्या वो आपके एक्चुअल कस्टमर्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, रीच भी अच्छी होती है, लेकिन जो कस्टमर बेस है वो नहीं बढ़ पाता, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। तो ऐसे केसेस में आपको डेटा का यूज़ ज़रूर करना चाहिए कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, क्या है जो आपको सुधारना चाहिए अपने बिजनेस में। तो इसमें आपकी मदद करेगा स्मार्ट रीच एआई अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी और ऑनलाइन ऑडियो प्रोग्राम्स के थ्रू, और ये मेजर करता है कि क्या ट्रूली मैटर कर रहा है आपके बिजनेस के लिए, क्या वो कॉल्स हैं, बुकिंग्स हैं, ऑफर रिडेम्पशंस हैं या फिर एक्चुअल विजिट्स हो आपके बिजनेसेस को। ये सारा डेटा एनालिसिस करके आपको हेल्प करेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में। तो अगर आपको भी इनसे इंटरेक्ट करना है, बातें करनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो डू विजिट smartreachai.us और अपने लोकल अटेंशन को कस्टमर्स में बदलने के लिए तैयार हो जाइए।

आप सबका भी अच्छा ही होगा, सबका भला होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और आज हमने बहानों पर खूब सारा हंसी मजाक किया, लेकिन अब एक छोटी सी सीरियस बात, क्या हर एक्सक्यूज गलत होता है? अगर आप थक गए हैं और पार्टी में नहीं जाना चाहते तो क्या आपको कोई इलेबोरेट कहानी बनानी चाहिए, बहाने सोचने चाहिए? अगर आप किसी का काम नहीं कर सकते तो आपको झूठ बोलना चाहिए क्या? या फिर सिंपली कह सकते हैं कि सॉरी यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। हर नो के लिए बहाने या कहानी बनाना जरूरी नहीं है। कभी कभी हम लोगों को डिसअपॉइंट करने से डरते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने सच बोल दिया तो सामने वाला बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, इसलिए हम जो है बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ना एक रेस्पेक्टफुल नो भी अच्छा आंसर होता है। आपको हर बार अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। और इसी के साथ हम आज का ये सेगमेंट यहीं क्लोज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, कुछ गिव अवेज और इंटरेस्टिंग फन गेम्स अभी बाकी हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद फनेशर रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज आरजे सिमी।

बिल्कुल इतने ही जोरों शोरों से टेक्सास प्राइमरी केयर अपने एक और लोकेशन पे एक और मेडिकल फैसिलिटी लेके आए हैं, जिसका कि नाम है लोनॉक्सी मेडिकल एंड दिस इज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लोनॉक्सी मेडिकल लेके आया है प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी अवेलेबल है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ और ये 7 days अ वीक ऑपरेट करते हैं फ्रॉम 8 AM to 8 PM। आप कभी भी जाइए, वॉकिंग वेलकम है और किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। और जो 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो है अब सबकी कम्युनिटी में सबकी मदद करते आए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि लोनॉक्सी मेडिकल भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाए और यू नो सेम प्राउड फीलिंग आए कम्युनिटी को उनसे।

0: ये सॉन्ग हमें रिक्वेस्ट किया था हमारे एक लिसनर ने और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क। अगर आप भी मुझसे कुछ ऐसे ही सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। आप हमें कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 पे और अगर वो हमारे पास अवेलेबल हुआ तो हम जरूर उसे प्ले करेंगे आपके लिए। अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम लाए हैं ढेर सारा धमाका, गिव अवे और बातें जो अभी तक मैं आपसे कर नहीं पाई हूँ। सी यू ऑन द अदर साइड वेरी सून।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal. Grand opening on 10th October.
6: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
12: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಾತ್ರಿ 8:00. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
15: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

मैं भी कहां मानने वाली हूँ, मैं फिर से वापस आ गई हूँ. दिस इज आरजे सिमी एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. और अभी आपका और मेरा साथ होने वाला है अगले एक घंटे. और मेरा शो होता है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ऑन एवरी सैटरडे, तो हमारा वक्त है ये. और अभी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल आई मेरे पास और हमारे लिसनर्स की थी. उन्होंने बोला कि एक बात बताइए कि क्या आपके आसपास के लोगों को आपको टच करने में डर लगता है. तो मैंने पूछा, अरे ये तो अजीब सा सवाल है, क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं है. तो फिर उन्होंने बोला कि आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, बिल्कुल आप एक लाइव वायर की तरह हो, तो आपको ऐसे टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा क्या. एंड आई वाज लाइक ओ स्मूथ. काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट था ये, तो मज़ा ही आ गया मुझे. लेकिन अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए सैटरडे की एनर्जी का इंतज़ाम तो आपको हो गया है. लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आपको चाहिए एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, तो आप जा सकते हैं तारा एनर्जी, तारा कमर्शियल एनर्जी के पास, क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड है, इनकी सर्विस काफ़ी रिलायबल है और ये एनर्जी प्लान्स भी ना कस्टमाइज कर देते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग. और ये टेक्सस बिजनेसेस को हेल्प करते आ रहे हैं सिंस 2002, तो ऑफकोर्स इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है टू हेल्प यू आउट. तो डू कॉल देम एट 8444282808, या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं विच इज taraenergy.com. और इसी के साथ एक और एनर्जेटिक सॉन्ग फिर हम लेके आएंगे गिव अवे राउंड, सो स्टे ट्यून्ड.

देखिए फर्स्ट क्लास तो चंडीगढ़ बाइट्स का खाना है, और क्योंकि हम गिव अवे राउंड में एंटर कर गए हैं तो आज का गिव अवे भी चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से ही है। आपको जीतने पे मिलेगा $10 का डिस्काउंट ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन डाइन इन ऑप्शन। और ना चंडीगढ़ बाइट्स की अगर बात करें तो एक एक्साइटिंग चीज उनकी ये भी है कि वो हर मंडे टू फ्राइडे ना डिशेज जो है लंच के डिशेज रोटेट करते रहते हैं, और ये लोकेटेड है ऑफ मैकडॉर्मट ड्राइव इन एलन में। और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए जैसे कि उनके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स क्या हैं, मेन्यू में क्या है उनके, तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज chandigarhbites.com। और इस गिव अवे के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट। अगर आपको ये गिव अवे मिल चुका है इस शो में या फिर फनेशिया के किसी भी अदर शो में इन लास्ट वन मंथ, ओके, तो शुरू करते हैं आज का गिव अवे राउंड। और क्वेश्चन ये है कि आजकल ना इंस्टाग्राम पे और सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जो है एक गाना काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, और जैसे ही मैंने उसको सुना तो मेरे दिमाग में तो उसकी जो उसके मिलता जुलता हिंदी मूवी का एक सॉन्ग एकदम अचानक से याद आ गया। तो मैं भी आपसे वही पूछने वाली हूँ, आपको ज़रूर याद आ जाएगा, आप ध्यान से सुने इस सॉन्ग को। आपको मुझे बताना है कि ये कौन से हिंदी सॉन्ग से मिलता जुलता सॉन्ग है, और आपको उस मूवी का नाम भी बताना है, ओके। तो सॉन्ग एंड मूवी नेम जो है आज के गिव अवे राउंड के विनर बताने वाले को जो भी बताएंगे वो विनर डिक्लेयर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं ये सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ नेक्स्ट आपके लिए, और आपको मुझे कॉल करना है @972-235-5555 पे।

सबने सही पहचाना, इतने सारे कॉल्स आए हमें इस गिव अवे के लिए और फटाफट आ गए, मतलब पहला जो सेंटेंस था उसी के बाद आ गया, बिल्कुल सही। बहुत लोगों ने जैसे बताया कि ये है ना इंस्पायर्ड है, और या फिर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सॉन्ग पहले आया, लेकिन बहुत सिमिलर है फ्रॉम दिस सॉन्ग ना कजरे की धार, टेकन फ्रॉम द मूवी मोहरा, जिसमें सुनील शेट्टी थे और एक्ट्रेस भी थी, उनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। और आज के विनर है ऐश्वर्य त्रिवेदी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50। आप डाइनिंग करने जाइए, वहाँ का अमेजिंग खाना खाइए, और कुछ लोग अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो आपको मैं फटाफट ना कजरे की धार सुना देती हूँ, फिर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड दिस इज सो सिमिलर।

अभी इसके पहले हम एक सॉन्ग सुन रहे थे जो कि जिसमें ना मेंशन किया गया था कि ना कचरे की धार ना मोतियों की हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। लेकिन एज अ वाइफ मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे हस्बैंड मेरी इस तरीके की तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है ज्वेलरीज की, तुम तो ऑलरेडी इतनी सुंदर हो, इतनी प्रिटी हो, तो ये तो भाई मुझे कभी कभी साजिश लगती है कि वो खर्चा बचाने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं जाके ज्वेलरीज खरीदूँ, नहीं नहीं। और पर ऐसा करना ना मुश्किल है और हमें रोकना स्पेशली मुश्किल हो गया है जब से पीएमजी ज्वेल्स आ गए हैं फ्रिस्को में, ब्रिंगिंग देयर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस और टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। आप यहां पे ना जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्यूटीफुल गोल्ड, डायमंड और ब्राइडल कलेक्शन हर सेलिब्रेशन, हर ओकेशन के लिए। तो आप जरूर जाएं पीएमजे ज्वेल्स जो कि है मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में लोकेटेड, क्योंकि हर ज्वेलरी एक कहानी बताती है।

आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। और चाहे लड़की कितनी भी ब्यूटीफुल हो, आप टुल हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए हो, लेकिन आपको ना बहुत सावधानी से चलना है। अगर आपको ड्राइव करना है तो बिल्कुल ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। अपने साथ हमेशा एक ऐसे फ्रेंड को लेके जाइए भाई कि जो नहीं पीता होता, दैट्स सच अ सेवियर थिंग आई वुड से। लेकिन अगर ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि दोनों तरफ की गलती हो। अक्सर जो है ऐसा एक ही बंदे की गलती होती है, लेकिन सफर दो तीन लोग और कर रहे होते हैं, एक पूरी इनोसेंट ड्राइवर को भी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे एक्सीडेंट, कार या ट्रक एक्सीडेंट में या फिर स्लिप और फॉल इंसिडेंट में आपको क्या करना है? आपको उमर ख्वाजा के पास जाना है, क्योंकि वो हेल्प करेंगे आपके केस को लड़ने में। और तब तक आपसे पैसे नहीं मांगेंगे जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते, अपना कॉम्पनसेशन जो भी आप डिजर्व करते हो आपको मिल नहीं जाता। अगर आपको उनसे फ्री कंसल्टेशन लेना है तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं @469-300-5046 या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाइए, which is attorneyomar.com।

चलिए अब वक्त आ गया है हमारे लास्ट सेगमेंट का, और इस सेगमेंट में ना हम एक वर्ड चूज करते हैं और फिर उसके अराउंड जो गाने हैं हिंदी गाने हम उसे प्ले करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कोई गिव अवे राउंड नहीं है, ये बस हम मजे के लिए करते हैं और थोड़ी बहुत तो आपकी जीके टेस्टिंग भी हो जाती है बॉलीवुड सॉन्ग्स की। तो आपका कॉल का भी मुझे इंतजार रहेगा। आज का वर्ड है नैना। तो आपको ना ऐसे सॉन्ग्स बताने हैं मुझे जिसमें जो कि स्टार्ट हो रहा है आइदर नैना से या फिर एटलीस्ट उसके फर्स्ट सेंटेंस में नैना वर्ड जो है काफी यूज हुआ हो। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एट 972-235-5555 पे। तब तक मैं इस सेगमेंट का आगाज कर रही हूँ एक प्यारे से सॉन्ग से जिसमें कि नैना वर्ड यूज हुआ है।

मुझे रियलाइज हो रहा है कि काफी सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें कि ये वर्ड नैना यूज हुआ है. काफी सारे लिसनर्स ने मुझे कॉल करके कुछ सॉन्ग्स रिक्वेस्ट किए हैं, जिनमें से है तेरी नैना फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना एज वेल एज फ्रॉम माय नेम इज खान. और शिवानी का भी फोन आया था, उन्होंने बताया कि एक पुराना कुछ ब्यूटिफुल सा सॉन्ग है नैना बरसे रिमझिम, और इतनी सारी बारिश हो रही है तो आई थिंक कि बहुत ही एप्ट सॉन्ग है ये फॉर द करंट वेदर. और अनूप का भी फोन आया था, उन्होंने भी ये वाला सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, सपनों से भरे नैना. मुझे काफी पसंद है यार ये सॉन्ग, दिस इज फ्रॉम लक बाय चांस. और देखते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, 10 मिनट का टाइम है आखिरी मेरे जाने से पहले. मैं सोचती हूँ या ट्राई कर रही हूँ कि जो भी बजा पाऊँ आप लोगों के लिए. हियर इट इज.

तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपकी कहानियां, आपकी बातें और आपका प्यार मेरे साथ बना रहेगा अंटिल नेक्स्ट सैटरडे 6 to 9 PM। उम्मीद है आज का शो आपके दिन में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स लेके आया होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनों को प्यार दीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद को भी थोड़ा वक्त दीजिए। एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो वॉज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AJ फिनटेक्स, जो कि ऑफर करते हैं ट्रस्टेड टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज इंडिविजुअल्स के लिए भी एज वेल एज बिजनेसेस के लिए भी। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं एट 4699429888 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज AJFintax.com। और जाते जाते आई होप कि जो नेक्स्ट सॉन्ग है वैसा ही आपको फील आया होगा मेरे शो के बारे में। टेक केयर, गुड नाइट।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: That garba was totally worth it. We had so much fun.
4: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
3: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज कर भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
11: सुबह ड्राइव पे
12: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो. दोपहर फोन पर
13: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो.
1: शाम को घर पर
12: You are listening to Fun Asia Radio.
1: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
12: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi and connect with your customers in their own language.
1: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
12: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
1: Fun Asia Network. Be heard. Be remembered. Be chosen.
14: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: ये मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

ਤਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention

बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: Tell us, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
2: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Phonasia Revolution and let the good times roll.

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: डाक टिकट जारी होगी।
1: The Magic 24/7 only on 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
4: बेटा 95% आए
5: हाँ मम्मी
4: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
6: मेरा
4: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
10: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
9: Miss Clicks.
11: 100 logon ne click bhi kiya.
9: Customers kitne aaye?
12: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
11: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: शताब के लिए तब किया ना, वो भारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और खड़िया रह गया।
1: जय साहब।
2: जय
0: सृष्टि के जन्म से 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: हर अपना इलाका है, चाय पानी मौज से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा सर, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसे, लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, ये लड्डू के बदले इतने जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: गलत बात है, छोड़ छोड़ छोड़
1: छोड़,
0: शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी करके कुछ

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
2: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. It's the time to clock out.
3: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: सुबह ड्राइव पे
4: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो। दोपहर फोन पर
5: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी एशिया रेडियो।
2: शाम को घर पर
6: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
2: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर, तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
7: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
2: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net।
7: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
8: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

जाने लेके किस्मत ने बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

favorite music on your favorite radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: That garba was totally worth it. We had so much fun.
15: I lost so much of calories today. And I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
14: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
16: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
17: Ye tara wo tara har tara.
18: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
19: बेटा, 95% आए?
20: हाँ मम्मी.
19: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
21: मेरा?
19: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
21: वो
18: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
22: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
23: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame.
0: जहां तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
20: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 AM टू 8 PM मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: लाइट्स माइक बॉलीवुड फनेजिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

सुबह और शाम हर पहर आपके नाम फनेजा रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविन. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
2: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के.
1: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
2: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
4: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
6: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM. Funisia Radio.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। I'll be there with you till noon today. जी हाँ, covering in for एक रूप for the next one hour. So just chill में हम करते हैं कुछ मजेदार fun और interesting बातें आपके साथ share on Sundays और सुनते हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने। So studio का number रखें याद 9722355555

From the movie Zindagi Na Milegi Dobara, that was Suraj Ki Baahon Mein. And well, एक गिव अवे है आपके लिए. ये गिव अवे आ रहा है फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से. ये आपको पता है फन पिज़्ज़ा किचन ने एक लॉन्च किया है ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज़्ज़ा लाइनअप आपके लिए. एंड देर आर जस्ट पिज़्ज़ाज, दे आर लाइक फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. सो चाहे फिर वो फ्रॉम यू नो फ्रेश फिएस्टा वेजी हो टू द फियरी पोलो लोको, द सी फूड पैक्ड सेनोर कैमरॉन, एवरी बाइट इज बोल्ड, एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस. So you need to just head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. And for more details, visit funpizzakitchen.com. And now, here's your chance to win a $10 discount from Fun Pizza Kitchen by answering this simple question, right? So question ye hai ki, you know, abhi barish ho rahi hai, pehle itni garmi thi, thand aane wali hai. आपको मुझे बॉलीवुड के कोई भी तीन ऐसे गाने बताने हैं जिन गानों में कोई मौसम की बात हो रही हो, कोई भी, इट कैन बी एनी वेदर, उस वेदर के बारे में कुछ बात हो रही हो उन गानों में. सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन फॉर यू ऑल इज 972-235-5555. एंड द नेक्स्ट वन इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट टेकन फ्रॉम द मूवी लुटेरा.

Well, that was the title track from Piku. And yes, I would like to tell you all about Passion Health Primary Care. क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क है, तो कोई बात नहीं. जी हाँ, फिकर नॉट. गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. एंड दिस विल इंक्लूड प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर. तो आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 214-666-6259 और यू कैन इवन विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम. एंड याद रखें दैट दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस. यू नो एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, बट डेफिनेटली पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर रखें याद.

All right, that was taken from the movie Swadesh, and this is Madhulika lekar aayi hu Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, main dungi aaj aapka saath dopahar ke 12 baje tak. Before I play the next song, I do want to tell you all about Texas Primary Care. क्योंकि 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने बहुत प्राउडली और बहुत प्यार से हमारी कम्युनिटी को केयर किया है एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फिजिकल लोकेशन. जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग लियोनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ये जो लियोनॉक्सी मेडिकल है ना, इट ब्रिंग्स सो मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ. सो बी इट प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज हों, सिटी स्कैन्स हों, cardiac diagnostic, even Himalayan Med Spa services, they are all under one roof. Saaton din khule hain, ji haan, they are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. and you can walk in anytime. There's no appointment needed whatsoever. So, yaad rakhiyega, they are open 7 days a week.

आज ये फन एशिया आपके लिए कुछ और भी लेके आए हैं। जी हाँ, फन एशिया नेटवर्क नाउ ब्रिंग्स इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया। बिकॉज होता है ना कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप अच्छी यू नो सोशल मीडिया प्रेजेंस बना पाएं। सो वी आर देयर टू हेल्प यू। जी हाँ, फन एशिया नेटवर्क इज देयर टू हेल्प यू विद रिलेटिव मीडिया, from engaging reels and graphics to captions, content distribution and amplification through Funasia's radio, digital and community platforms. Relative Media gives you gives you or your brand a complete content solution. So aap call kare, the number is 469-424-3188 to book your content audit today. Relative Media powered by Funasia Network. And the next one, well, that's a song request coming from Rahul. Thank you so much for tuning in.

कल अगर नींद चुराई हुई है आपकी, ये सोच सोच कर कि भाई खाना क्या बनाना है, किचन भी साफ करना है, वीकेंड है, क्यों चिल करें ना. सो मैं बताती हूँ, आप जा सकते हैं तंदूरी फ्लेम. जहाँ दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड एंड इतना अच्छा मौसम है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ड्राइव. तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड इज़ द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन. फिर चाहे आप स्पाइस लवर्स हैं या कुछ अच्छा अच्छा खाने के लवर्स हैं, राइट, सर्विंग अप सिजलिंग तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद द होम स्टाइल पंच. फिर आपको चाहे तंदूरी स्मोकी कबाब्स खाने हों या वेलवेटी करीज या फिर फ्रेश गर्मा गर्म नान, एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन. सो डू स्टेप इन टूडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डनरी डे इन टू अ फीस्ट. सो तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट रखें याद, दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड.

You are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करेंगे हम, as the name suggests, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. करेंगे कुछ मजेदार, फन और इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर, और सुनेंगे कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने.

वेल, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और यही कह रहे हैं कि ए खुदा मैं क्या करूं, कोई ट्रक या कार एक्सीडेंट में फंस गए हैं या कहीं कोई फॉल या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो आपको जो है करना क्या है, आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा याद रखने हैं. बिकॉज इफ़ यू आर इंजर्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल एक्सीडेंट, देन यू नीड टू फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटर्नी ओमर विल फाइट योर केस राइट एंड गेट यू योर कॉम्पनसेशन एंड यू डू नॉट पे nothing until you win your case. So you do not have to pay attorney Omar Khwaja till the time you win your case, right? So aap attorney Omar Khwaja ko call kare. The number is 469-300-5046 or you can visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

चलिए कुछ फन फैक्ट्स करती हूँ आपके साथ शेयर, रिलेटेड टू वाटर. जी हाँ, पानी से लेके कुछ रिलेटेड फन फैक्ट्स लेकर आई हूँ आपके लिए. पता है आपको, 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज एक्चुअली कवर्ड बाय वाटर, बट मोस्ट ऑफ इट इज सॉल्टी ओशियन वाटर. अच्छा, ये भी पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था, मेरे को तो अभी पता चला दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर. कूल हाँ. एक और बात कि वैसे तो अगर आप पानी ग्लास में डालें तो इट्स कलरलेस, राइट? कोई ऐसा कलर नहीं दिखता पानी का. इट जस्ट टेक्स द यू नो फॉर्म एंड द कलर ऑफ द वेसल इट इज इन. लेकिन जो एक्चुअल प्योर वाटर होता है, इट श्योर इज स्लाइटली ब्लू.

Hey, this is Madhulika. लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. सुन रहे हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने. सो बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट वन, आई डू वांट टू टेल यू ऑल अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. क्योंकि होता है कभी कभी कि वो आपके नेटवर्क में नहीं है या आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, देन यू कैन गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट. जस्ट फॉर $85 अ मंथ आपको मिलेगा प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर. आप उन्हें कॉल करें. जी हाँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का नंबर है 2146666259, और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com. याद रखिएगा, दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई.

taken from the movie Kal Ho Na Ho. That was Kuch To Hua Hai. And ji haan, ek giveaway zarur aapke liye aa raha hai, and that's coming from Chandigarh Bites. Ji haan, here's your chance to win $10 off on your billing of $50 only dine-in option, right? तो आप वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं स्पेशल थाली जो मिलती है मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. दे आर लोकेटेड, जी हाँ, चंडीगढ़ बाइट्स इज लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. आप chandigarhbites.com विजिट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स. और अब आपके लिए सवाल ये है कि जो गाना अब मैं नेक्स्ट प्ले करूँगी आपको मुझे बताना है, ये तो रीमिक्स वर्जन है पर ओरिजिनल बॉलीवुड सॉन्ग जो है ये किन एक्टर और एक्ट्रेस पे शॉट हुआ था. सो यू हैव टू लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग, इट्स अ रीमिक्स वर्जन. यू हैव टू टेल मी कि जो ओरिजिनल बॉलीवुड सॉन्ग है वो उस वीडियो में कौन से एक्टर एक्ट्रेस आपको दिखे थे.

0: ऑलराइट, तो हमने पूछा था कि इस गाने का जो ओरिजिनल वर्जन है उस गाने में, उस गाने के वीडियो में कौन दिखा था, एंड अगर आपने सही जवाब दिया तो आप चंडीगढ़ बाइट्स का ये गिव अवे विच इज़ $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 डाइन इन ओनली जीत जाएंगे. एंड वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. जी, आपका नाम बताएं.
1: सईदा
0: ऑलराइट सईदा जी, सो बताइए कि कौन एक्टर एक्ट्रेस दिखे थे इस वीडियो में.
1: ये हीरो रणधीर कपूर और हीरोइन जया भादुरी,
0: ऑसम, वेरी गुड,
1: मैम
0: ऑसम.
1: जवानी दीवानी।
0: जी बिल्कुल सही जवाब. मैं आपको ऑफर लेती हूँ एंड आई विल टेक सम
1: ओके
0: डिटेल्स फ्रॉम यू. तब तक मैं लिसनर्स के लिए एक और गाना प्ले करती हूँ, होल्ड करिएगा.
1: ओके थैंक यू।
0: हाँ.

0: They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
3: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com।
1: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
6: Every home has a story. Let's create yours together.
7: Subah Drive Pe.
8: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
9: दोपहर फोन पर।
10: I don't listen to Spotify. I listen to Funny Share Radio.
11: शाम को घर पर।
12: You are listening to Fun Asia Radio.
13: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
14: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings, or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you, and connect with you.
13: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
14: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
15: The Dill of Dallas. Heart to heart.

taken from the movie Lakshya. That was Agar Main Kahun. Well, sometimes I agree and sometimes I don't. क्योंकि कई बार जो दिल में है वो कहना भी जरूरी होता है. नहीं, ऐसा थोड़ी कि बस जो दिल में है वो क्यों कहना आ रही है, तो बात गलत है. Well, it's always always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say tata bye bye, but आप कहीं जाइएगा नहीं. Do stay tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio, as यहाँ हमारे shows आपको entertain करते रहेंगे. Coming up next is Neelam. मैं मिलूंगी आपको अगले शनिवार और इतवार, जी हाँ, सैटरडे और संडे. सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होता है मेरा और आपका साथ, only on Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. This is Madhulika signing off.

को कछु न आई हाथ, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कह गई कबीर।

पछताओगे, प्राण जाहि जब छो।

दिस इज केजीएम 104.9 एफएम फनीशा रेडियो. आप सुन रहे हैं मेरे साथ और मैं हूं नीलम आपकी खिदमत में टिल 2 पीएम ऑन 104.9 फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. आपका और हमारा ये म्यूजिकल साथ रहता है एक से दो के बीच में, जहां पर आपके लिए गैर फिल्मी गाने लाती हूं मैं. कुछ प्राइवेट एल्बम्स की बातें, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें, ओटीटी प्लेटफॉर्म के गाने, वेब सीरीज से लेके पाकिस्तानी ड्रामा से लेके कुछ बैंड के भी बातें करते हैं हम यहाँ पर टिल 2 पीएम, जहाँ पर बहुत सारे कलाकारों की बातें होती है, साज और आवाज़ की बातें होती है. कुछ ऐसे गाने जो आपकी रूह को छू जाएं. बारिश है, बारिश हो ना हो, धूप हो या ठंड हो, हम आपके लिए कुछ ऐसे गाने लाते हैं जिससे आपके दिल के म्यूजिकल संगीत भरा आपके दिल को हम कर देते हैं यहाँ पर एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM एंड ऑन सैटरडेज 12 से 3 के बीच में. आपने मुझे 12 से 1 के बीच में गुजराती कार्यक्रम में सुना, अब रहूंगी आपके साथ टिल 2 PM विद दिस ब्यूटीफुल मेलोडीज एंड सोलफुल सॉन्ग्स on 104.9 FM.

या रहमान जी के संगीत में मैं तुम्हारा, तुम ना होवे मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा रहा, क्या बात है। और ये जो गाने की बहुत ही खूबसूरत दो आवाज़ें आपने सुनी, एक तो थे हृदय गिन्नाती और उनके साथ जो दूसरी लड़की थी वो थी जोनीता गांधी। ना जोनीता गांधी जो है वो नाम अब अनजाना नहीं रहा फॉर बॉलीवुड, कनेडियन सिटीजन है वो, लेकिन बचपन से वो गाती थी और उन्होंने जो बचपन से एक तय किया था कि बॉलीवुड में जाना है, इवन दो शी इज़ अ कनेडियन बॉर्न पर्सन, और बॉलीवुड भी उनको गाना था, लेकिन बिफोर दैट शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑन यूट्यूब। वो कवर्स बनाती थी पुराने गानों के, एंड एज आई सेड शी वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कनाडा, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदी पर बहुत ही अच्छा उनका कमांड था, एंड दैट्स वाई शी वॉज सिंगिंग। बहुत सारे उनकी एल्बम है, बहुत सारे उनकी आवाज़ में यूट्यूब पे कवर्स भी है, लता जी के गानों से लेके आशा जी के गानों पर। और धीरे धीरे बॉलीवुड में उन्होंने ऑफकोर्स तय किया था कि शी वॉन्टेड टू बिकम अ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, एंड दैट्स वॉट शी डिड। इतने सारे गाने नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है। 2013 में इफ यू रिमेंबर चेन्नई एक्सप्रेस में एक फिल्म आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें उनका एक गाना है। एंड देन उनके और भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकअप सॉन्ग, यस आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कि एक और कमर्शियल सॉन्ग, इट वॉज अ ब्रेकअप सॉन्ग, वो वट वॉज दैट मून, दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल में जो ब्रेकअप सॉन्ग है दैट इज ऑल्सो सॉन्ग बाय जोनीता गांधी। सो धीरे धीरे उनको गाने मिलते गए, एंड दिस वॉज वंस अगेन जोनीता गांधी ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। जोनीता गांधी के बाद मैं आपको ले चलती हूँ जावेद अली की तरफ, और जावेद अली के साथ है सौरेंद्र एंड सौम्यजीत इन अ प्राइवेट कॉन्सर्ट दैट इज वर्ल्ड म्यूजिक डे। बहुत ही खूबसूरत तीनों की कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप ही के साथ।

क्या बात है जावेद अली साहब, बहुत बहुत खूब। जी हाँ, जावेद अली साहब की आवाज़ में आपने सुना ये गीत ओरिजिनली, इफ यू रिमेम्बर, संग बाय रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ में भी ये गीत है। दोनों ने ये गीत को गाया है। फिल्म का नाम आई बिलीव इट इज़ जंगली। जी हाँ, सायरा बानो की फिल्म थी, इफ यू रिमेम्बर, शमी कपूर एंड सायरा बानो। लेकिन फिलहाल आपने जो गीत सुना वो था जावेद अली साहब की आवाज़ में, सौरेंद्र एंड सौम्यजीत। हर साल वर्ल्ड म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं और ब्यूटिफुली जितने भी हमारे क्लासिक गाने हैं उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन लेजेंडरी सिंगर्स को। और उनकी जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट होती है ना, जो धुन होती है ओरिजिनल गाने की धुन होती है, एंड देन व्हेन दे डू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीनिंग के बहुत सारे साजिंदों के साथ स्टेज पर व्हेन दे डू द लाइव प्रेजेंटेशन दे ट्राई टू डू सम वेरिएशन। यानी कि ओरिजिनल गाना वही है, धुन वही है, लेकिन उसमें कुछ हरकतें बदल देते हैं, कुछ संगीत की और मॉड्यूलेशन आ जाती है, कुछ कोरस सिंगिंग में और मॉड्यूलेशन आ जाती है। सो दैट इज़ हाउ दे प्रेजेंट इट एवरी ईयर एंड सच अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू ऑल अवर लेजेंडरी सिंगर्स। मैं हूँ नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए, गानों के लिए। मैं तो गाती नहीं हूँ ये गाने, हमारे जो सिंगर्स गाते हैं सिर्फ मैं वही लाती हूँ, लेकिन शुक्रिया हमें सुनने के लिए। वेल, तो आई नो एक वक्त हो चुका है आपके लिए एक अगला गाना, लेकिन सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट जावेद अली, एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी जावेद अली के लिए। तो जावेद अली साहब जो है गुलाम अली साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे बचपन से। वो इनका उनके पिताजी एक मशहूर कव्वाल इंडिया में, तो बचपन से घर में संगीत का माहौल था, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों गुलाम अली साहब के लिए बहुत प्यार था। और गुलाम अली साहब को ये पता थी बात कि भाई मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं इंडिया में जिनका नाम है जावेद अली, उनके पिताजी को भी वो जानते थे। तब जब इंडिया में उन्होंने पहली लाइव कॉन्सर्ट की थी तब वहाँ पर जावेद अली जी को मौका मिला था टू ओपन दैट शो, एक मौका मिला था जावेद अली जी को, और वो उनको गुरु मानते थे जावेद अली। वो इतना उनको मानते थे कि जब उन्होंने सिंगिंग की अपनी करियर की शुरुआत की तो उनका लास्ट नेम वॉज जावेद हुसैन था, लेकिन सिंस ही लव्ड सो मच गुलाम अली साहब, उनको गुरु मानते थे, उनको खुद को अपना उनका शागिर्द मानते थे, उन्होंने अपनी लास्ट नेम जावेद हुसैन से बदलकर जावेद अली कर दी, जस्ट टू रिमेंबर हिज गुरु गुलाम अली साहब, उनके प्यार की वजह से, उनकी भक्ति, गुरु भक्ति जिसे हम कहते, एंड ही बिकेम जावेद अली।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुककीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
12: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
11: Aakhir kya hai is biryani mein?
12: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
13: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
16: कीमा पराठा।
17: मम्मी, ऑमलेट पराठा।
18: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी।
19: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
9: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड, विजिट signaturecuisine.net.
20: Order, order. Mr. Impressions, campaign का रिजल्ट?
21: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
20: Miss Clicks?
22: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
20: कस्टमर्स कितने आए?
23: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
24: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention

तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाई टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर.

एंड वेलकम बैक. दिस इज़ KZMB 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. बारिश आप सभी को मुबारक हो. हम जिंक्स नहीं करेंगे जी बिल्कुल. और ये बस हल्की हल्की सी बारिश ऐसी होती रहे हमारे डॉलर फोर्टवर्थ में. एंड इट सीम्स कि अब 90s के दिन गए भाई जी बिल्कुल. अब 80s और 70s में हम आ पहुँचे हैं. और जब भी ऐसे मौसम की बात होती है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर. डू यू गाइस अग्री? क्योंकि दिसंबर के नवंबर के बाद स्पेशली आफ्टर थैंक्सगिविंग ठंड बहुत बढ़ जाती है. एंड स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी हु आर फ्रॉम मुंबई, हमें भी ठंड इतनी पसंद नहीं आती. इवन दो इट्स बिन डेकेड्स हियर इन दिस सिटी, डेकेड्स, लेकिन फिर भी ठंड इतनी पसंद नहीं आती. गर्मी जब बढ़ जाती है राइट आफ्टर मई जून, तब भी लगता है कि यार कितनी गर्मी है क्योंकि इट्स सो ड्राई, राइट? लेकिन फिर भी दिस आर द आई थिंक मंथ्स फ्रॉम राइट फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर नवंबर, दो तीन महीने कुछ ऐसे होते हैं कि लगता है कि बस क्या मौसम है, प्यार भरा मौसम. वेल, मौसम प्यार भरा हो ना हो, लेकिन गाने ऐसे रहेंगे जिससे आपके दिल को हम प्यार भरा मौसम बना देंगे. चलिए इसी बात पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तारा कमर्शियल एनर्जी का. नंबर है उनका 8444282808, और यू कैन विजिट taraenergy.com. Serving Texas since 2002, जी हाँ, with competitive rates, reliable services and customized energy plans. अगर आप business owners हैं, आज ही call कीजिएगा 8444282808. बातें होती रहेंगी कुछ गैर फिल्मी गानों के साथ, OTT platform की बातें होती रहेंगी, dramas की बातें होती रहेंगी, कुछ आपकी राय, कुछ हमारी राय, कुछ कलाकारों की बातें, till 2 PM with me, your host Neelam.

आप ही की पसंद पे बहुत ही खूबसूरत गीत फैजल कपड़े उनके साथ जैब की आवाज़ में आपने सुना ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो हमारे DFW के लिसनर्स के लिए। और अभी अभी फारूक साहब का कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई आप हमेशा फोर्ट वर्थ का भी मेंशन करती हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्यों ना करें, क्योंकि DFW हमारे लिसनर्स जितने डैलस में हैं इतने फोर्ट वर्थ में हैं, एंड आई एम श्योर बियॉन्ड DFW एज वेल। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर की या अल्लाह की कृपा है हम पर कि हमारे लिसनर्स बियॉन्ड DFW में भी है, अराउंड द स्टेट्स, बहुत सारे ऐप में सुनते हैं माई रीजनल शो एंड अदर शोज एज वेल। तो सारे सिटीज़ के नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन DFW ऑफ कोर्स, DFW इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हम यहाँ के हैं भाई, रहवा से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा अब यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो जितने हमारे डैलस के लिसनर्स प्यारे हैं उतने ही फोर्ट वर्थ के। तो इसलिए कॉल आया फारूक साहब का कि थैंक यू, आपने फोर्ट वर्थ का भी आप हमेशा मेंशन करती हो, क्यों ना करें। तो बस सुनते रहिए ऐसे ही हमें। आप ब्रेक, नॉट ब्रेक, लेकिन इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसी सीरीज़ है जिसने 31 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ किए हैं नेटफ्लिक्स पे। कौन सी है वो सीरीज़ मैं आपको बताऊंगी, एंड वाई सो, क्यों, वो क्या थी खास बात इस सीरीज़ में, वो सारी बातें इस गाने के बाद ऑन 104.9।

सो मैं बात कर रही थी गाने से पहले कि एक ऐसी सीरीज है जिसने 31 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ एंड 73 मिलियन से ज़्यादा वॉच आवर्स. सो ऑल दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जियो हॉटस्टार वगैरह वगैरह, दे डू मॉनिटर देयर वॉच आवर्स के लोगों ने कितने आवर्स इस सीरीज़ पे निकाले. और 73 मिलियन से ज़्यादा वॉच आवर्स हुए हैं इस सीरीज़ में, और उसका नाम है प्रीतम एंड पेट्रो. जी हाँ, ये राजकुमार हिरानी जी की है पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम एवर ही वेंचर इन टू दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म. एंड बिंग राजकुमार हिरानी, वो कुछ मामूली तो कर नहीं सकते, उनकी बातें हमेशा बहुत ही अलग होती है. तो बस ये भी कुछ कॉमेडी थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीज है जो गोवा की लोकेशन पर है और बहुत पॉपुलर हो गई है, जिसमें अरशद वारसी भी है, वीर हिरानी है और उनके खुद के बेटे भी है इसी सीरीज़ में. डिजिटल क्राइम की बातें हैं, किडनैपिंग की है, कॉमेडी है, इमोशन है, सारे मसाले हैं इसमें. एंड मेकर्स जो है उसके राजकुमार हिरानी, एज आई सेड. सो अगेन, जो भी कोई टैलेंटेड डायरेक्टर हो, राइट, एनी टैलेंटेड डायरेक्टर, एनी टैलेंटेड आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, वो चाहे वेब सीरीज करे, मूवी करे, डॉक्यूमेंट्री करे, ड्रामा करे, कुछ भी कर ले, लेकिन जो उनका हुनर होता है वो आता ही है बाहर. एंड दैट्स व्हाट राजकुमार हिरानी अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म.

नई यादों का ये खोना पहचाना सा क्यों लगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी पेपॉन की, और गुल्लक। जी हाँ, गुल्लक ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसकी सीजन 4 और 5 तक आ चुकी है। एंड अ वेरी वेरी स्मॉल फैमिली, वेरी मिडिल क्लास हम्बल फैमिली की कहानी है। आई रियली लाइक अंटिल सीजन 4। सीजन 5 रिसेंटली मैंने देखी एंड आई थॉट कि अब फैमिली के बाहर की कहानियाँ ज़्यादा आने लगी थी। ऑफिस पॉलिटिक्स की कुछ बात थी, बच्चों के यू नो एट द इनिशियली जब 3 या 4 सीजन आती थी, एंटायर जो भी उनकी कहानी थी इर्द गिर्द उन चारों के घूमती थी। और छोटा सा घर, दिल्ली का छोटा सा घर, उनका जो मोहल्ला, वही कहानी थी। एंड इट वॉज सो स्वीट, वेरी वेरी स्वीट फैमिली। लेकिन अब आई थिंक इन रिसेंट सीजन व्हाट दे हैव डन इज़ उनके बेटे की ऑफिस की बातें, उनके बेटे की बॉस की बातें, फिर छोटे बेटे की कॉलेज की बातें, उनके फ्रेंड्स। सो इट हैज़ काइंड ऑफ डाइल्यूटेड जो जो उनकी फ्लेवर थी, इट वॉज जस्ट अबाउट फैमिली। अब दूसरी और भी बातें आने लगी है। सो सम हाउ आई फेल्ट कि सीजन 5 वॉज नॉट एज स्वीट एज इट यूज़ टू बी टिल 4। लेकिन खैर, घर घर की बातें होती है तो अच्छा ज़्यादा लगता है। एंड घर की बात निकली है तो चलिए ड्रीम होम मॉर्गेज की आपको याद दिला दूँ। एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल हुसैन भाई 972-245-5626, जहाँ पर सालों से उन्होंने कम्युनिटी में रहे 1998 से। जी बिल्कुल, एंड दे हैव हेल्प मैनी मैनी फैमिलीज नेशन वाइड। वंस अगेन इट इज़ 972-245-5626। आपका और हमारा साथ कुछ और लम्हे, कुछ और पल। जी हाँ, 2 बजे तक ये साथ रहता है आपका और हमारा। कुछ वेब सीरीज से लेके गैर फिल्मी गाने और गैर फिल्मी बातें रहती है ऑन 104.9।

शिल्पा राव की आवाज़ थी। एंड शिल्पा राव इज सच ए सिंगर कि उनकी आवाज़ में बॉलीवुड के गाने तो उन्होंने गाए हैं लेकिन कम गाए हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट उनकी टेक्सचर, उनकी जो आवाज़ है, इट मे नॉट बी वेरी सुटेबल फॉर एवरी सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग फॉर एवरी हीरोइन। और इसीलिए जब भी ऐसी आवाज़ आती है थोड़ी डिस्टिंक्ट फ्लेवर के साथ, फॉर एग्जाम्पल सोना मोहपात्रा, इफ यू रिमेंबर हर, जो बॉलीवुड में गाती है लेकिन बहुत कम गाती है, शी इज़ मेनली आई वुड से प्राइमरली वेब सीरीज़ में गाती है या उनके प्राइवेट एल्बम्स होते हैं, उनके कॉन्सर्ट वगैरह वगैरह, एंड कोक स्टूडियो में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। सो ऐसे कम आवाज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो बहुत ही फ्लेवरफुल एंड वेरी डिस्टिंक्ट टोन के साथ होती है। ऐसे ही साज और आवाज़ की बातें हम करते रहते हैं आपके साथ एवरी संडे बिटवीन 1 और 2। और जब OTT की बात निकली है तो वेल, अगर आप परिणीति चोपड़ा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, शी इज़ बैक ऑन द OTT प्लेटफॉर्म शक, एक उनकी सीरीज़ है हाल ही में आप देख रहे होंगे, उसी के साथ एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव। और उसमें परिणीति चोपड़ा एक ऐसी रिपोर्टर बनने वाली है जो इलीगल कुछ बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ एंड ऑल दोज थिंग्स, एज अ जर्नलिस्ट उनकी जो जर्नी रहेगी उसकी बात है। दैट इज़ रिपोर्टिंग लाइव बाय परिणीति चोपड़ा। बस अब हमारा वक्त हो चुका है, देखिए 1 से 2 का ही होता है वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल्स के लिए। जाते जाते PMG ज्वेल्स का शुक्रिया अदा करती चलूँ। फ्रिस्को में है, लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट, जहाँ पे 60 ईयर्स, जी हाँ 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। गोल्ड की बात हो, डायमंड की बात हो या ब्राइडल कलेक्शन, एक ही नाम, एंड दैट इज PMG ज्वेल्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कॉल्स, फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। अगर आप नहीं जानते तो सैटरडेज बिल्कुल मुझे सुनिएगा, जहाँ पर फिल्मी गाने होते हैं, और फिल्मी गाने कोई भी विषय हो, कोशिश होती है बहुत ही मेलोडियस सुरीले गाने लाए, अलग अलग थीम बेस्ड गाने होते हैं। सैटरडेज 2 से 3 के बीच में कम्युनिटी राउंड अप की भी प्रस्तुति करती हूँ मैं नीलम आपके साथ, एंड ऑन संडेज आज के दिन 12 से 1 के बीच में गुजराती कार्यक्रम, रीजनल कार्यक्रम, एंड 1 से 2 के बीच में कुछ गैर फिल्मी गाने बातें, एवरी संडे ऑन 104.9 FM फनी रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
3: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
4: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के।
5: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
4: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
7: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
1: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
8: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
9: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया। Let's go.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
3: सर। वो
2: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

कहो ना प्यार है जी, बिल्कुल प्यार है। इसीलिए आपसे मुलाकात करने के लिए 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी के जरिए आप पहुंचते हैं यहाँ स्टूडियो में हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। एंड डेफिनेटली बहुत सा प्यार है और खुशी खुशी कहते हैं कि प्यार है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल ऑन दिस 4th of October 2026। इट्स ए संडे आफ्टरनून 3:15। होप यू गाइज आर डूइंग वेल वेयर एवर इट इज दैट यू आर। हमेशा आपके लिए यही हमारी दुआ रहती है। वेल बारी है अब 2000 के डेकेड्स की, यानी कि द टेरिफिक 2000s। और अगले कुछ हफ्ते हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, एज इन द इंटायर 2000 की डेकेड। और आज हमने सिलेक्ट किए हैं 2000 में रिलीज हुई हिट फिल्मों के गाने। और जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी वो यही तो थी, कहो ना प्यार है। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2000 में। राकेश रोशन साहब ने इसे लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया अपने बेटे ऋतिक रोशन के लिए। ऋतिक रोशन की ये डेब्यू फिल्म थी, साथ में इनकी थी अमीषा पटेल। शी वॉज ऑल्सो अ न्यू बी, यानी कि ये उनकी भी पहली फिल्म थी। फिल्म में उनके साथ सपोर्टिंग रोल अदा किए थे अनुपम खेर, मुनीश पहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह एज वेल एज फरीदा जलाल और तनाज ईरानी भी इस फिल्म का हिस्सा थी। Now, कहानी as such, well, original थी भी और नहीं भी, because it was inspired by a Kannada film. आप में से जो Canadians हैं जानते होंगे, the name of that Kannada movie was रथा सप्तमी। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत आई थी, because there was a lot of overseas shooting as well. However, it brought in 88 करोड़ रुपीज back, making it the highest grossing Bollywood film of 2000, as in of the year 2000. In fact, ye film Guinness World Record ka hissa bhi bani for being a feature film with the most awards won. Aap jante hain kitne awards mile is film ko? 92 awards in numerous ceremonies and category. In fact, इस फिल्म में ऋतिक रोशन को ना सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एक्टर, बट ऑल्सो द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू एक्टर। और ये बाद में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल की गई फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स won by a Hindi film. So that is something, I would say. You know, especially when dono actors nahi ho aur film itni super duper hit ban jaye. Khair, we're going to go ahead and continue our segment, The Terrific 2000s, jisme aaj focus rahega 2000 ki hit filmi gaano par.

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म मोहब्बतें। जी हाँ, इस फिल्म में था प्यार ही प्यार, और ये प्यार था शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के दरमियान। एंड ऑफ कोर्स दिस फिल्म वाज आल्सो स्टारिंग अमिताभ बच्चन। चोपड़ा बैनर के अंडर बनाई गई इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने, और यश चोपड़ा साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था अंडर द यश राज फिल्म्स। इस फिल्म में इन एक्टर्स के अलावा स्मिता शेट्टी भी थीं, जुगल हंसराज भी, उदय चोपड़ा भी, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति झंगियानी भी थी। एंड इस फिल्म को नरेट किया था नारायण शंकर ने। एंड आप सभी लोगों ने फिल्म तो जरूर देखी होगी, पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये मूवी आज क्या है, मतलब इट्स 2026, इस फिल्म को रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं एंड आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी इवन once. Anyway, does not matter. Film was a super hit and it was actually the second highest grossing film of 2000. It made 76 crore rupees and won 4 awards including Best Supporting Actor, jo Bachchan sahab ko mila, aur Critic Best Actor Shah Rukh Khan ko diya gaya ye. And it also became the highest grossing film, a second highest grossing film of the year 2000. If you've just tuned in, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, जिसमें आज टेरिफिक 2000s में 2000 डेकेड में रिलीज होने वाली फिल्मों के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। आज बारी है फॉर द ईयर 2000, सो एक से बढ़कर एक बढ़िया गाना आज हम आपको सुनाएंगे on 104.9 FM. If you'd like to share any feedback, you're welcome to call us 972-235-5555.

0: फ्लोर्स क्लीन
1: चेक,
0: विंडोज क्लीन
1: चेक,
0: किचन क्लीन
1: चेक,
0: एयर डक्ट्स क्लीन।
1: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
2: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
3: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
4: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: It's the time to clock out.
4: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
3: It's the time to
15: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
0: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
16: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विद यू टिल 6 पीएम। इट इज 34 मिनट्स पास्ट 3 ऑन दिस 4th ऑफ अक्टूबर 2026. It's a Sunday afternoon. I hope you're having a relaxing Sunday with your friends, family. या अगर अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, रेडियो सुन रहे हैं तो कहाँ अकेले हैं, हम हैं ना आपके हम सफर। आज इस सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं टेरिफिक 2000 डेकेड के गाने, जिसमें आज सेलेक्ट किया है हमने 2000, द ईयर 2000, उसके हिट गाने आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर सॉन्ग सिलेक्शन। एंड बिफोर आई मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग, आई वांट टू टेल यू अबाउट पेज 3 ईटरी। नाउ इट्स अ नेम दैट एवरीवन इज फेमिलियर विद, पर हो सकता है कि आप डैलस में नए हों, ये भी हो सकता है कि आपने कभी रेडियो ना सुना हो, ये भी हो सकता है आपने रेडियो पर page 3 eatery ke bare mein na suna ho. Well, in that case, I can tell you that they have everything from sizzling kebabs to flavorful chaats to fusion bites and refreshing mocktails. Yani ki sab kuch milega aapko page 3 eatery mein. They are located very centrally in Hub 121, and you need to check it out. Now, I'll tell you what I like about this restaurant. I like their ambiance. It's very, very chic, very upscale. Ab chahe aapne brunch karna ho, lunch karna ho, dinner ho, ya ho koi date night, you can take that special someone to page 3 eatery. And they also have 4th September, which is today, 5 p.m. onwards, they are serving all dine-in guests will get Shrikhand to celebrate Janmashtami. So that's really nice. So, 5 baje ke baad se, abhi 3:35 hai, so go ahead, make this plan. Sirf aaj, they will be serving Shrikhand, and this is complimentary for everyone who comes to dine-in at page 3 Eatery. You can visit their website, page3eatery.com. Celebrate Janmashtami with them today. All right, ab commercial break se pehle jo gana humne aapke liye play kiya tha, that was from the David Dhawan film Dulhan Hum Le Jayenge. Aur usme dulhan thi kaun? Karishma Kapoor, aur dula was Salman Khan. And this was a full-on romantic comedy. Ye to aapko is baat se andaaza ho jayega ki is film mein Anupam Kher, Paresh Rawal, Kadir Khan, Johnny Lever aur Om Puri the. Yani ki agar supporting roles mein ye comedian ho to phir to comedy definitely guaranteed hai. This film was also one of the top grossing commercially successful films of the year 2000. Aaiye ab continue karte hain 5th highest film ke gaane ke saath. This one is from the film Refugee.

मेरे हम सफ़र अलका याग्निक की आवाज़ में सुन रहे थे रेफ्यूजी फिल्म से लिया गया ये गाना. रेफ्यूजी फिल्म वॉज आई बिलीव द फिफ्थ हाइस्ट फिल्म ऑफ 2000. दिस वॉज अ रोमांटिक ड्रामा. ये फिल्म इंस्पायर हुई थी एक शॉर्ट स्टोरी थी लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट जो कि केकी दारूवालिया ने लिखी थी और इस कहानी से इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई थी. कहानी थी एक इंडियन मुस्लिम आदमी की जो इलीगल रेफ्यूजीज़ को बॉर्डर पार कराता था. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और करीना कपूर के अलावा थे जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अनुपम खेर और ये अभिषेक और करीना दोनों की ही पहली फिल्म थी. इट डिड ग्रेट एट द बॉक्स ऑफिस. नंबर वन तो नहीं हो सकी पर इट वॉजेंट too bad at all. Aye, a segment ko continue karte hain. I hope you're enjoying. If you have any feedback or constructive criticism for our show, you're welcome to call us 972-235-5555. Hamari koshish hoti hai ki apne program ko aapke liye behtar se behtar taur par pesh karein, present karein. So we're always open to your feedback. I also wanted to mention ke मैं भूल गई क्या मेंशन करना था. आपने मुझे बातों में लगा दिया. आप लोग बहुत सीरियसली बहुत बात करते हैं, मैं भूल जाती हूँ उन बातों में.

हाय, मेरा दिल चुरा के ले गया चुराने वाला। सुन रहे थे आप जोश फिल्म से लिया गया ये गाना। और जो बात आपने मुझे तब बहुत सी बातों में भुला दी थी, वो मैंने ये कहना था कि आई होप दैट ऑल द सॉन्ग्स दैट आई एम प्लेइंग फॉर यू टुडे यू आर एंजॉयिंग। मेरी यही कोशिश होती है कि गाना हिट होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए एंड वेल लाइक्ड होना चाहिए। सो आई होप आई एम सक्सेसफुल इन माई एफर्ट्स एंड आप हमारी आज की सिलेक्शन इंजॉय कर रहे हैं। जो गाना अभी अभी आपने सुना ऐश्वर्या राय और चंद्रचूर सिंह पर पिक्चराइज किया गया था, आवाज थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। इट इज 3:45 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से। जोश फिल्म के बारे में बस बहुत कुछ तो कहने के लिए नहीं है। इट्स अ रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म और मंसूर खान साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। वीनस फिल्म्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूर सिंह, शरद कपूर और प्रिया गिल थे। एंड दिस फिल्म वॉज शॉट मोस्टली इन गोवा और इसमें कोंकणी भाषा का भी इस्तेमाल हुआ था। इट डिड गेट अ लॉट ऑफ नॉमिनेशन, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा अवार्ड फिल्म जीत नहीं पाई, बट इट वॉज स्टिल नेवरदलेस द 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2000। ऑलराइट, चलते हैं अगले गाने की तरफ। ये अगला गाना हमारे ह्यूस्टन के कुछ लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, जिन्हें हम ये डेडिकेट कर रहे हैं गाना। एंड ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेक्शन एज वेल ऑफ आवर द सीक्वेंस ऑफ सॉन्ग्स दैट आई एम प्लेइंग टुडे। तो गाना हम प्ले करते हैं ह्यूस्टन के मुकनी साहब एंड अली के लिए। लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस। एंड ऑफ कोर्स बाकी तमाम दुनिया के प्यार करने वालों के लिए भी ये गाना हमारी तरफ से।

हर दिल जो प्यार करेगा उसे हंसना भी होगा उसे रोना भी होगा. आई गेस दैट्स द प्राइस दैट वी पे फॉर लव. अनदर रोमांटिक कॉमेडी. ये फिल्म डायरेक्ट की थी राजकुमार साहब ने. साजिद नादियादवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था. फिल्म के मेन अदाकार थे सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी. नाउ दिस फिल्म हैपेंस टू बी अ रीमेक ऑफ द मलयालम फिल्म चंद्रलेखा जो 1997 में रिलीज हुई थी. पर सर वो भी ओरिजिनल नहीं थी. दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय एन अमेरिकन फिल्म कॉल्ड व्हाइल यू वर स्लीपिंग जो कि 1995 में आई थी. इस फिल्म को एज सच कोई अवार्ड्स तो नहीं मिले बट इट डिड रिसीव मल्टीपल नॉमिनेशंस. इनफैक्ट इस फिल्म का एक और भी बड़ा सुपरहिट गाना था पिया पिया जो प्रीति पिंकी ने गाया था और उन्हें नॉमिनेट किया गया था बेस्ट फीमेल प्ले ब्लैक सिंगर के लिए बैक in the day. At that time that was a big deal. Well anyway, this film it costed around 13 crore rupees to make but it pulled in a little over 32 crore rupees, so not bad at all. For those of you just tuning in, aaj ke is terrific 2000 segment mein hum year 2000 mein release hui filmon ke top 10 gaane aapko sunwa rahe hain, as in top 10 movies ke gaane. मस्त माहौल में जीने दो. आइए सुनते हैं फिजा फिल्म का ये गाना, वन ऑफ माई फेवरेट्स.

मुझे मस्त माहौल में जीने दे. फिल्म का नाम था फिजा, वेयर करिश्मा कपूर इज लुकिंग फॉर हर ब्रदर रितिक रोशन. दिस फिल्म वॉज ऑल अबाउट हर सर्च फॉर हर ब्रदर. इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था खालिद महमूद साहब ने, मोहम्मद साहब ने, सॉरी. एंड इट वॉज अ क्राइम थ्रिलर विच केम आउट इन 2000. इट रिसीव 7 नॉमिनेशंस एट द 46th फिल्म फेयर अवार्ड एंड इट वॉन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर करिश्मा कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आई बिलीव जया बच्चन जी को. ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ और सुनते हैं 9th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का ये खूबसूरत गाना.

आपका दिल हमारे पास है और हमारा दिल आपके पास है। फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप, जो पिक्चराइज किया गया था अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय पर। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। 2000 साल की ये 9th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। नाउ रियली क्विकली आई वांट टू थैंक एजी फिनटेक्स फॉर sponsoring this part of our show. And aap to jante hi hain, they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. For further details, visit agfintechs.com. Aur ab aaiye chalte hain hamare aaj ke is terrific 2000s ke aakhri gaane ki taraf. Taken from the film Mela.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha?
7: Suno na, mera wo wala set kahan hai?
8: Kaun sa?
7: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
8: अरे सारे तो सेम है
7: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
8: ओ हाँ ये तो अलग है
9: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
11: Next question.
10: Bride ki entry song.
11: Yaad nahi.
10: Buffet mein kya tha?
11: Chana papri chaat, bihari kebab, dilli nihari, achari chicken, mutton biryani.
9: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye. Choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
7: Ye last Diwali pehna tha. Ye Neha ki shaadi mein. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है हे भगवान मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है
12: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के
7: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा
12: ऑफ कोर्स फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ तथास्तु
9: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को इंडियन अटायर फ्रिस्को योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन That garba was totally worth it. We had so much fun.
7: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
9: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
13: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd After your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
14: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
9: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
14: When is it?
9: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
14: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
9: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
15: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio. खैर मकदम करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त तमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में 5 मिनट्स पास्ट 4. टुडे इज द 4th ऑफ अक्टूबर 2026. And before we get started with this next part of our show, I have a special announcement for business owners. Now, it's not just about how many people see or click on your ad. It's about how many become customers. Hai ki nahi? Matlab agar wo aapka ad dekhte hain badi achhi baat hai, lekin agar wo aapse kuch khareedte nahi hain, aapki service use nahi karte, to phir kya fayda? Isiliye hai Smart Reach AI, a Fun Asia Network product that helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital, streaming TV, and online audio. Then measure what truly matters, yani ke calls, bookings, offers, redemptions, and actual visits to your business. Visit smartreachai.us and turn local attention into कस्टमर्स. ऑलराइट, अब वक्त हुआ है हमारे शब्द सेगमेंट का. क्या है ये शब्द सेगमेंट? वेल, इसमें क्या होता है, हम कोई एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं, कोई एक लफ्ज सेलेक्ट करते हैं, और फिर पूरे एक घंटे आप वो गाने सुनते हैं जिनकी पहली दो लाइनों में यानी कि मुखड़े में वो वर्ड इस्तेमाल होता है. अब इस सेगमेंट में नए पुराने हर तरह के गाने आपको सुनने को मिलते हैं, पर हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलते हैं, यानी कि शुरुआत हमेशा पुराने गानों से की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं. इस गाने में हमेशा हम एक इनाम भी टाई अप कर देते हैं, और आज का इनाम है फन कीजा पिज्जा किचन की तरफ. फन कीजा पिजन, नो नॉट कीजा पिजन, बल्कि पिज्जा किचन की तरफ से है. आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड. अगर आप गेस कर सकें ये पहले गाने को सुनकर कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज, आज का शब्द क्या है. नंबर तो हसूलन आपके पास होना चाहिए, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से दे देती हूँ. 972-235-5555. लिखा आपने? नहीं लिखा? ओके, कोई नहीं, मैं फिर से बताती हूँ. 972-235-5555. गाना सुनिए, गेस करके बताइए कि आज का वर्ड क्या है. एंड जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड हमेशा पहली दो लाइनों, एज इन पहले गाने का जो मुखड़ा होता है, एज इन द मेन पार्ट, द बिगिनिंग पार्ट ऑफ इट, इज वेयर यू विल फाइंड दिस वर्ड ऑफ टुडे.

लेके पहला पहला प्यार और जो पहली पहली कॉल आई सही जवाब के साथ, वो ही बन गए इनाम के हकदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस बिंदिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आज का हमारा वर्ड है पहले या पहला। जी हाँ, सो आज जितने भी गाने आप सेगमेंट में सुनेंगे, दे आर गोइंग टू हैव द वर्ड पहले या पहला। सो आई होप यू विल एंजॉय आवर सिलेक्शन, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको बिंदिया। एंजॉय कीजिए फन पिज्जा किचन का मजेदार पिज्जा।

सौ साल पहले सुन रहे थे आप ये गाना एंड दिस वाज पिक्चराइज्ड ऑन आशा पारेख और देवानंद और आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की. एंड आई होप अब सबको पता चल गया है कि आज का शब्द क्या है. जी हाँ, आज जो गाने हम आपको सुनवाएंगे दे गोइंग टू हैव द वर्ड पहला या पहले. जैसे कि पहला गाना हमने आपको सुनवाया ली कि पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. 50s का ये गाना हमने आपको सुनवाया और अब हम पहुंचे 60s तक. तो अब ऑटोमेटिकली बारी है 70s की. तो आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं.

किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, टेकन फ्रॉम द 1971 फिल्म पराया धन। ये गाना राकेश रोशन पर पिक्चराइज किया गया था। इट इज 16 मिनट्स past 4 और आप सुन रहे हैं शब्द का सेगमेंट, जिसमें आज का वर्ड है पहला पहले। व्हाट आई रियली एंजॉय अबाउट दिस सेगमेंट इज द फैक्ट कि इसमें आपको इतनी मजे की वैरायटी के गाने सुनने को मिलते हैं, जो आमतौर पर शायद आपको किसी और प्रोग्राम में या किसी और सेगमेंट में सुनने को ना मिले। इसी के साथ आइए चलते हैं 70s के एक और बड़े ही प्यारे गाने की तरफ।

ग्रेट गैम्बलर से लिया गया ये गाना अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। आइए चलते हैं 70s के एक और सुपर हिट गाने की तरफ।

पहली बार किशोर कुमार की आवाज में दिल को छू लेने वाला, मोहब्बत के तारों को छेड़ देने वाला ये गाना हमने आपको सुनवाया। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई विल बी विद यू टिल 6 PM। वी आर प्लेइंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स फॉर यू। आज शब्द के सेगमेंट में हमारा वर्ड है पहली, पहला या पहले। इससे पहले कि हम अगले गाने की तरफ बढ़े, आई वांट टू टेल यू अबाउट गृह प्रवेश। नाउ इफ यू प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम होम और मेक अ स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यू गॉट टू विजिट द गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय माय स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को। मीट लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली NCR, एंड यू विल गेट टू एक्सप्लोर ओवर 200 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ। जॉइन देम ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को। एंट्री भी फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, सो यू कैन गेट योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया, एंड इट वॉज वेटिंग फॉर यू एट गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो। ना ये चलते हैं एक और 80s के गाने की तरफ।

आई एम श्योर 1986 के इस गाने से बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये गाना गोविंदा और नीलम पर पिक्चराइज किया गया था। आवाज़ें थी आशा भोसले और अमित कुमार की एंड द सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द फिल्म इल्जाम। नाउ आवर शब्द सेगमेंट विल कंटिन्यू, जिसमें आज का वर्ड है पहले, पहली या पहला। सो वी आर गोना कंटिन्यू दैट आफ्टर द ब्रेक। आई होप यू आर एंजॉयिंग टुडेज सॉन्ग सिलेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑन 104.9 FM।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Doors clean.
3: Check.
2: Windows clean.
3: Check.
2: Kitchen clean.
3: Check.
2: Air ducts clean.
3: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
4: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dry vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
5: अरे वो केक आया क्या?
6: डीजे कौन हैंडल करेगा?
2: डेकोर वाले को कॉल किया।
6: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
5: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
6: ऑसम इवेंट्स?
5: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट। अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
7: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
5: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
1: कॉल नाउ एट 214-725-7466। दैट्स 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
8: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट Free entry and free parking. An event by My Square Fee.
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है। तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
10: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग सुबह ड्राइव पे
13: यूर लिस्निंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो
14: दोपहर फोन पर
15: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
1: शाम को घर पर
16: You are listening to Fun Asia Radio.
1: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो
17: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और visits. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
1: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
17: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

कबूतर जा जा जा, मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना सलमान खान और भाग्यश्री पर पिक्चराइज किया गया था। आवाज थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आई बी विथ यू टिल 6 PM। इट इज 40 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 4th of October 2026. I hope you guys are doing well wherever it is that you are. It's a new month, a new day, a new beginning, and I hope this new beginning brings you a lot of happiness. Shabd segment aapki khidmat mein pesh kiya ja raha hai. Aaj ka word hai pehla, पहले या पहली, और उसी सिलसिले में हमने ये गाना आपको सुनवाया। ये था आखिरी 80s का गाना। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द 90s। सो आइए सुनते हैं ये सुपरहिट गाना।

पहले तो कभी कभी गम था, अल्ताफ राजा की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, इट बिकेम अ सुपर हिट बैक इन द डेज. अब आइए, आई थिंक इस सेगमेंट में हम एक ही गाना और ऐड कर सकेंगे शब्द सेगमेंट में, जिसमें हमारे आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज़ था पहले, पहली या पहला.

करिश्मा कपूर और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में. इट्स 9:05. चलते एक बड़े ही शोक और मजेदार गाने की तरफ. दिस वन्स टेकन फ्रॉम द फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा. यू आर लिसनिंग टू द खान स्पेशल, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलमान खान के फिल्मी गीत.

taken from the film कहीं प्यार न हो जाए, ये गाना सलमान खान और रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था. आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की. 16 minutes past 5, let's keep this segment going और चलते हैं फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के टाइटल ट्रैक की तरफ.

चोरी चोरी चुपके चुपके 2001 में रिलीज होने वाली ये फिल्म सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा के साथ थी। इट्स 21 मिनट्स पास्ट 5, यू आर लिसनिंग टू द खान स्पेशल, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलमान खान की हिट फिल्मों के गाने। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू टेल यू अबाउट रिलेटिव मीडिया। Fun Asia Network now brings its media expertise to your social media with Relative Media, from engaging reels and graphics to captions, content distribution and amplification through Fun Asia Radio Digital, as well as radio and community platforms. Relative Media gives your brand a complete content solution. So, give them a call, 469-424-3188, to book your content audit today. Relative Media, powered by Fun Asia Network. Let's go ahead and continue the Khan special with this next song. Wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat.

दिया मिर्जा और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे से लिया गया था. वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल. आइए अब लेकर चलते हैं आपको एक और बहुत ही अच्छे से गाने की तरफ. दिस वन इज टेकन फ्रॉम द फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम, जिसमें मेन हीरो गो शाहरुख खान थे, लेकिन फिर भी सलमान खान ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था.

0: ओम बड़ा चासी।
1: सुन रहे थे आप फिल्म तेरे नाम से लिया गया, ये गाना सुखविंदर सिंह की आवाज में, ये गाना सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 एफएम फनीशर रेडियो। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विद यू फॉर अनदर 20 मिनट्स। हमने शुरू किया था ये खान स्पेशल वेल अ कपल ऑफ वीक्स बैक, लेकिन डिफरेंट खान्स को हमने फीचर किया। पिछले संडे शुरुआत की हमने सलमान खान के फिल्मी गीतों के साथ, और अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 2003 तक पहुंचे हैं। बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किए। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज प्ले ओनली द हिट सॉन्ग्स। सो अब 2003 की एक और उनकी फिल्म थी, उसमें बहुत मेजर रोल तो उनका नहीं था लेकिन गाना जरूर था, तो हमने सोचा क्यों ना वो गाना भी आपको सुनवा दें। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस सेगमेंट। इफ यू हैव एनी फीडबैक यू वेलकम टू कॉल, एज सच रिक्वेस्ट मैं नहीं ले रही। 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर।

माहिमा चौधरी और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म बागबान से लिया गया था। आवाजें तो आपने पहचान ली होंगी, विद उदित नारायण एंड अलका याग्निक। 42 minutes past 5, 4th of October 2026. I hope you're enjoying this lovely Sunday evening. एक और झूमता हुआ गाना, सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी, पूछेंगे तो सोचना पड़ेगा, डिपेंड करता है कौन पूछ रहा है।

बेताब दिल है धड़कनों की कसम, सलमान खान और शिल्पा शेट्टी पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना फॉर द फिल्म फिर मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं खान स्पेशल में आज सलमान खान के फिल्मी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकली। सो अब बारी आती है फॉर द फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा।

सलमान खान और स्नेहा उलाल पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म लकी से लिया गया था। आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। ऑलराइट फोक्स, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, बट दैट्स ओके। आई हैड अ ग्रेट टाइम एंटरटेनिंग यू गाइस एंड आई होप यू एंजॉयड ईच एंड एवरी सॉन्ग। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले सैटरडे को, सेम टाइम सेम प्लेस, यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 FM सैटरडे को बिटवीन 3:30 एंड 6, एंड अगेन ऑन संडे बिटवीन 3 एंड 6 PM। आखिरी गाने के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी एंड दिस लास्ट सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। क्यों बताएं क्यों किया।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था?
8: सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: Floors clean.
9: Check.
11: Windows clean.
9: Check.
11: Kitchen clean.
9: Check.
11: Air ducts clean.
9: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
12: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में.
14: Introducing Punjab by Page 3. पंजाब से आए शेफ्स के हाथों बना अमृतसरी कुलचा विद छोले और मक्के की रोटी विद सरसों का साग, साथ में एक ठंडी लस्सी.
13: पंजाब by Page 3, now in Irving. स्वाद पंजाब का, अंदाज पेज 3 का.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
19: क्या मतलब?
1: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
19: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian. अब जाए तो जाए कहाँ?
2: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
3: मतलब crispy golden dosa?
2: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis और एक delicious buffet जहाँ choices ही choices हैं.
3: Wow! Great food, full variety and everyone's happy.
11: Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy. Together.
6: Bindas bolo.
20: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
21: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाई टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फॉर एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूं इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। दोस्तों इस खूबसूरत सी संडे की शाम में साथ रहेगा आपका और मेरा 6 से 8। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ इस 2 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में हमारे फोन लाइंस के जरिए 9722355555 और हमारे बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली और आज जैसे बहुत बहुत सुहानी। कैसे भी हो हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही। ऐसे चलते हैं यहाँ पर कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

जी हाँ, आपकी सबकी शाम शानदार करने आई हूँ मैं यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर, आपकी अपनी आरजे अपूर्वा। भाई दोस्तों, इतनी खूबसूरत सी, बेहतरीन सी, शानदार और शानदार शाम है, तो फिर गाने भी तो यहाँ पर ऐसे ही शानदार ही बजने चाहिए। वेल, मैंने सोचा कि बहुत दिन से हमारा कार्डियो हुआ नहीं है, सो चलिए आपको आज कार्डियो करवाती हूँ। तो कार्डियो का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि एक ही मूवी का फास्ट पेस गाना और उसी मूवी का स्लो पेस गाना, ऐसा चलता है हमारे शो का सिलसिला। तो फिर अभी आपने शानदार मूवी का फास्ट पेस गाना सुना एंड अभी उसी मूवी का एक स्लो पेस गाना आप सभी को सुनवाऊंगी और ऐसा चलने वाला है हमारे शो का सिलसिला टिल 7 PM। और 7 से 8 के बीच में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा कुछ थीम बेस्ड शो लेकर आई हूँ, तो उसके भी बेस्ड ऊपर गाने सुनेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस 2 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के साथ। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ मेरे अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी, और 8 बजे तक रहने वाला है आपका और मेरा साथ। तो अगर आपको भी कोई गाना सुनने की इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना है, या फिर किसी मूवी फास्ट पेस और स्लो पेस गाना आपको रिक्वेस्ट करना है, यू कैन गिव मी अ कॉल। द नंबर टू कॉल इज 972-235-5555। विद दैट आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द मूवी शानदार।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना दोस्तों, शानदार मूवी से सुन रहे थे आप स्लो पेस्ट इन द वॉइस ऑफ निखिल जॉर्ज एंड नीति मोहन। कार्डियो चलने वाला है दोस्तों यहाँ पर, एक मूवी का फास्ट पेस गाना और उसी मूवी का स्लो पेस गाना, इसी को हम कहते हैं हमारा कार्डियो सेगमेंट। तो जैसे कि आपको बता देती हूँ जिन्होंने कभी सुना नहीं है मेरे इस सेगमेंट के बारे में, तो फास्ट पेस गाने के साथ हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमको डांस करने की इच्छा होती है, और जैसे ही स्लो पेस गाना चलने लगता है तो हमारी दिल की धड़कने एकदम धीमी धीमी मध्यम मध्यम हो जाती है, तो इसी के साथ हमारा कार्डियो भी हो जाता है। सो इसी सेगमेंट को हम कहते हैं कार्डियो सेगमेंट, एक ही मूवी का फास्ट और उसी मूवी का स्लो पेस गाना। तो अगर आपको भी किसी मूवी का फास्ट या स्लो पेस गाना रिक्वेस्ट करने की इच्छा आकांक्षा या मनोकामना है, द नंबर टू कॉल द स्टूडियो इज 972-235-5555। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्व एंड आई विल टेक यू टू द एंड ऑफ माय शो अंटिल 8 PM। सो जुड़े रहिए आप भी मेरे साथ इसी 2 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में, ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
2: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
3: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
2: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

Awesome. Rekha Bharadwaj ki awaaz mein ye jawani hai diwani se sun rahe the dosto aap ye fast paced gana Ghagra. कार्डियो सेगमेंट चल रहा है दोस्तों हमारा, एक ही मूवी का फास्ट पेस गाना और उसी मूवी का स्लो पेस गाना, ऐसा चल रहा है सिलसिला। तो ये सिलसिला चलते रहेगा शाम के ठीक 7 बजे तक। 7 से 8 के बीच में आपको दूसरे कुछ थीम पेस्ड गाने सुनवाऊंगी और वैसे ही हमारा शो हम करेंगे कंक्लूड। तो अगर आपको भी किसी मूवी का फास्ट पेस गाना या फिर उसी मूवी का स्लो पेस गाना रिक्वेस्ट करना है, द नंबर टू कॉल द स्टूडियो इज 9722355555। आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पर सराखों पर रखी जाएगी और यहाँ पर जरूर प्ले होगी, ये वादा है मेरा आपके साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा का। जो भी गाने रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबाउ, दैट इज द ओनली कंडीशन वी हैव हियर इन द स्टूडियो। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ ये जवानी है दीवानी के स्लो पेस्ड गाने की तरफ। एंजॉय दिस ट्रैक।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 6 एंड दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। जुड़े रहते हैं अभी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। आज के हमारे इस 2 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में दोस्तों कार्डियो सेशन चल रहा है। जिन्होंने ये कभी सुना नहीं है इस सेशन के बारे में, उन सभी को बता देती हूँ। कार्डियो सेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ही मूवी का हम फास्ट पेस्ड गाना सुनते हैं और उसी मूवी का स्लो पेस्ड गाना सुनते हैं। जैसे कि फास्ट पेस्ड गाना सुनते वक्त आपकी दिल की धड़कने तेज हो जाती है और स्लो पेस्ड गाना सुनते वक्त आपकी दिल की धड़कने एकदम स्लो स्लो मध्यम मध्यम हो जाती है और इसके साथ आपका कार्डियो भी हो जाता है। सो विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ, जिसको अश्मित ने रिक्वेस्ट किया है एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

ब्यूटीफुल दोस्तों, गाना, गहरा हुआ गाना सुनकर अभी भी दिल को इतना अच्छा सुकून मिलता है. ओ माय गॉड, द वे इट वाज सांग, द वे इट वाज शॉट, एंड द वे रणवीर लुक्ड इन द मूवी एंड द सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग. अगले रिक्वेस्टों की तरफ बढ़ेंगे भाई. उससे पहले आप सभी को बता देती हूँ दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. यू कैन कॉल देम. द नंबर टू कॉल इज 469-942-9888 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट व्हिच इज agfintechs.com. कार्डियो सेशन चल रहा है दोस्तों हमारा, तो चलिए अभी आपको अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ लेकर जाती हूँ. बहुत सारी गानों की रिक्वेस्ट क्यू अप हो चुकी है दोस्तों, तो अगर आपको भी आपके गानों की रिक्वेस्ट क्यू अप करनी है, एक ही मूवी का फास्ट पेस और उसी मूवी का स्लो पेस गाना अगर आपको मुझे बताना है, द नंबर टू कॉल द स्टूडियो इज 9722355555. अगले गाने जो आपको सुनवाने वाली हूँ वो नेहा की रिक्वेस्ट की तरफ है और वो सुनना चाहती है फास्ट पेस एंड स्लो पेस गाने फ्रॉम द मूवी जब वी मेट. तो चलिए पहले फास्ट पेस एंड उसके बाद स्लो पेस गाना आप सबके लिए.

नेहा की रिक्वेस्ट पर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गाने सुन रहे थे आप, स्लो पेस एंड फास्ट पेस, टेकन फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। और अभी बारी आ चुकी है अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ने की। हमें सत्या साहब का कॉल आया था और वो गाना सुनना चाहते हैं, रादर गाने सुनना चाहते हैं, फास्ट पेस एंड स्लो पेस फ्रॉम द मूवी गैंगस्टर। तो चलिए पहले आपको फास्ट पेस गाने की तरफ लेकर चलती हूँ, एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड या अली। एंजॉय दिस ट्रैक।